भाई मैंने ओके जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी फिर ठीक है ओके जी और वरी शौफाम अल जन्नत को सलूट वाला सलाम आई एम गुलाम अली फ्रॉम टांग थैंक यू सो मच डियर अमानने जी शुक्रिया।

बाहर का मुंगवरता गड्डी रूप मैदान के संग पसंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्द

0: और रोजाना उसका अपने एक रूटीन बना ली है,
1: ठीक है।
0: तो उस वो तो मर्ज अपनी जगह पे कायम है, आप वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के,
1: ऐसी बात है,
0: कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपको सुकून देते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं है तो वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा।
1: ऐसी बात है क्योंकि जब भी घर में अक्सर यही होता है किसी के सर में दर्द होता है तो वो फौरन कहते हैं कि एक कप चाय पिलाते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी बात है ना,
0: हमारे खून में शामिल हो गई है ना चाय, वो तो हम बाहर से जाएं या आएं तलब होती है कि यार एक कप चाय मिल जाए,
1: क्योंकि चाय एक रिवायत बन चुकी है हमारे घरों में, जब कोई मेहमान आते हैं या कोई भी आता है सो चाय पिलाई जाती है,
0: वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है,
1: हिस्सा है बिल्कुल, ऐसी बात
0: और
1: है।
0: इसका बेहतरीन बस हमने उसको अब दूध डाल के उसको चाय बना लिया, हालांकि अगर हम इसको कल भी हमारी बात
1: इसी पॉइंट पर बात,
0: चाय इस तरह नहीं है, चाय का मफहूम कुछ और है, हम लोग उसे पत्ती पानी में डालकर खूब उसे पकाते हैं, वो जिस तरह होटलों वाले दे फेंट रहे होते हैं तो चीज कि वो बस कह लें कि चाय नाम की है,
1: ऐसी बात,
0: ठीक है, उसकी अफादियत उतनी नहीं है,
1: ऐसी बात है।
0: अब बाकी इसके साथ जो है कि तशखीस जब होती है तो पता चलता है कि इसमें बाज दफा ये भी होता है कि एक जिसे हम कह लें टेंशन हेडिक्स, ये भी सर के एक उसके दर्द में ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना। अब उसमें से उसकी किस्म कह लें, अब बाज दफा वो सर के गिर पट्टी बांध लेते हैं बड़ी टाइट किस्म की और कुछ कोई मालिशें कर रहा है, कोई से दबा रहा है कि यार ये चीज हो, लेकिन असल में उसकी वजूहात देखें कि असल में वजह है क्या, मुस्तनद मौली से किसी से मशवरा करें और उसका प्रॉपर हल करें। सर का दर्द है, नॉर्मली है, कॉमन है, आम है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्द हवा लगी तब भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शोर गोल हुआ तब भी हो सकता है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन देखना यह है कि उसकी उसकी एक प्रॉपर उसका एक सोल्यूशन निकले,
1: ठीक है,
0: आरजी ना हो, मुस्तकिल हो, फिर आप अपना जहनी दबाव जो है कम से कम लें, सोच फिक्रे हर शख्स के साथ है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन
1: है।
0: आप उसको अपने पे सवार ना करें, जब आप सवार करेंगे वो आपके सर दर्द के तौर पे सामने आ जाएगा,
1: जाहिर सी बात है,
0: फिर आप मुसलसल काम कर रहे हैं बैठ के, उस चीज को भी आप थोड़ा सा एक साइड पे करें, थोड़ा सा अगर बिलफर्ज है कई हमारे टेलर हजरात हैं दर्जी हैं,
1: हाँ जी,
0: तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम जो है मुसलसल बैठे हैं तो वो चार चार पांच पांच घंटे बैठे जाते हैं,
1: जाहिर सी बात,
0: मशीन चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहीं गप्पे मार रहे हैं, वहीं चाय चल रही है, उसमें भी बेहतर तो यह है कि अगर वो बीच में कोई 10-15 मिनट के लिए उठ के जरा थोड़ी सी वॉक कर लें और फिर बैठ जाएं, तो ये चीज उन पे काफी उनकी बॉडी पे जो है असरअंदाज होती है, मुसलसल काम जो है ये भी सर दर्द का बायस बन जाता है। फिर उसके बाद आती है कि हमारे बैठने का अंदाज, बाज दफा हम अपने जिस्म को मरोड़ तरोड़ के बैठ जाते हैं, उस पर भी हमारे असाब पे हमारे पट्ठों पे दबाव आता है, खून जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी सर्कुलेशन में भी फर्क आता है,
1: जाता है
0: तो फिर वो भी सिर दर्द का बायस बन सकता है। फिर नींद की कमी तो है ही है, वो तो हमारी रूटीन बन गई है, हमने लेट नाइट सोना होता है वो भी वजह है। फिर इसके साथ साथ थकन, काम में हम इतने रहे कि हमने अपने वजूद को हद से ज्यादा थका लिया,
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: ये चीज भी जो है वो भी असरअंदाज होती है। आगे चलें तो इसी वजह से ही बाज दफा माइग्रेन का मसला बन जाता है, दर्द शकी का या सर का दर्द है, अब उसमें भी देखना है कि उसमें और मुकम्मल सर के दर्द में क्या वजूहत है, क्या उसमें हम किस तरह कंपेयर करेंगे,
1: ऐसी बात,
0: इसीलिए मुआलिज से मशवरा जरूरी होता है। हालांकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स से बंदा पहचान सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो माइग्रेन है या आम आधे सर का दर्द है ये आम दर्द से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: उनमें एक कह लें कि वॉमिटिंग की सी कैफियत होगी, मछली की कह लें कैफियत मालूम होगी, रोशनी से वो दूर भागेगा, वो कहेगा यार मैं थोड़ा मुझे अंधेरे जगह पे मुझे करें, कमरे में अगर अंधेरा करें पर्दे करें, मैं थोड़ा सा अगर वो इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उसे थोड़ा सा साइड मारेगा,
1: ऐसी बात है जी।
0: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा, ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं,
1: हाँ जी ऐसी बात,
0: वहां से जाके। और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस महसूस करेगा। और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कह लें इससे भी वो एलर्जिक होता है, वो कहता है मैं इससे दूर हूँ।
1: चाहे वो अच्छी हो या
0: चाहे अच्छी है या बुरी है, बुरी से तो खैर दूर होने ही होना है, लेकिन अच्छी भी जो है
1: वो भी सर में दर्द,
0: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी। वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया। और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा वाइट करेगा,
1: ऐसी बात है,
0: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
1: ऐसी बात है,
0: ये चीजें हैं। तो उसपे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते, तो नजर में कमजोरी, जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
1: बिल्कुल डालते थे,
0: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाती थी, बड़े पन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते। अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो अभी भी सुरमा इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: उससे आंखों की रोशनी, आंखों की ताजगी बरकरार रहती है और उसकी आंखों की थकावट नहीं होती। और इसकी वजह से भी जब आंखों में कमजोरी आएगी नजर में, तो इसकी वजह से भी सर दर्द रहेगा,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब उसके लिए भी वो मशवरा करेगा, देखेगा अपने आप को कि यार मेरी नजर वीक हो रही है। तो इस लिहाज से सर दर्द जो है वो एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं,
1: ठीक है,
0: कि आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर सर दर्द का इलाज होता है। सर दर्द तकरीबन 70-72 किस्म का है।
1: अच्छा, 70-72 किस्म के अक्साम है सर के दर्द,
0: अक्साम है। अब उसमें नोट करना होता है, खाली हम एक पेनाडोल या पैरास्टामोल खा के तो हम वक्ती तौर पे तो सर का दर्द दूर कर लेते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन बाद में जब वो होता है तो काफी बहुत शिद्दत से होता है और बाज दफा वो कोई नया ही मर्ज जो है वो क्रिएट करता है सामने,
1: ठीक है।
0: फिर इसी वजह से बाज दफा ये कह लें कि जिनको नजला जुकाम रेशे बलगम की शिकायत होती है वो भी सर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, उनको भी सर दर्द होता है। अब उसमें भी तशखीस करनी होती है कि यार ये इनको नजला जुकाम है, कब से है, इनका रेशा जो है या केरा अंदर गिर रहा है हलक में दिमाग से उतर रहा है, ये चीज भी उसके लिए सर का दर्द जो है उसकी वजह से भी हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: ठीक है। अब वो सिर्फ कहां से पता चलेगा, वो सिर्फ मुआलिज ही बता सकता है उसको, उसकी तशखीस करके। अपने तौर पे तो उसने गोली खानी है कि यार मैं टैबलेट लूं और वो इस्तेमाल करूं और उसकी तौर पे मैं अपना काम चाले करूं,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: फिर बाद दफा हम लोग पानी में कंजूसी कर जाते हैं कि यार थोड़ा पिया, और बाज दफा बहुत ज्यादा ठंडा पिया,
1: ऐसी बात है,
0: पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पानी ठंडा निकाल दिया, फ्रिज से निकालें अभी भी, ये चीज भी नुकसान देती है, सर के दर्द को बढ़ाती है और पानी की कमी जो है ये भी उसको मसले को बढ़ा देती है। तो इस वजह से फिर कमजोरी आएगी,
1: हाँ जी,
0: चक्कर भी इसी वजह से ही बाज लोगों को आते हैं, कई मुझे चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तशखीस हो सकती है कि सर दर्द किस वजह से,
1: किस वजह से हो रहा है
0: और उसका इलाज क्या है।
1: ऐसी बात,
0: फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम, बहुत चंद लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद वर्जिश से वाकफ ही नहीं है, वो वैसे बस कहते हैं यार हम चलते हैं मीलों या हम बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, वो उसी को वर्जिश से तशबीह दे देते हैं कि यार यही हमारी वर्जिश है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन अपने जिस्म को एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मूव करना या उसको वार्म अप करना कि वो गर्म हो, तो उसमें फिर पट्ठों में लचक आती है, उसके खून का जो दुरानिया है वो भी ठीक रहता है, तो फिर सर के दर्द का सवाल पैदा नहीं होता,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: फिर बाज दफा होता है कि कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं, टाइम से काम में मसरूफ है, अच्छा ठीक है रखें जी ठहर के खाएंगे, या अब टाइम ज्यादा हो गया है शाम में देख लेंगे,
1: ठीक है,
0: फिलहाल चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, ये चीज भी जब आप खाना छोड़ते हैं इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता।
1: अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये आदत भी आजकल नौजवानों में पाई जाती है कि सोने से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले खाना खा के फिर सो गए रात को,
0: ये भी गलत है,
1: ये भी गलत तरीका है ना,
0: बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदे का काम है कि आपने जो करा है उसने साथ साथ उसका काम जारी है,
1: ऐसी बात है,
0: वो उसको हजम कर रहा है, तो वो जितना आप जल्दी खाते हैं और आप उतनी देर में अपने घर में

0: में ऐसा नहीं है, और खसूसन जैसे अब मौसम सर्द आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें रातें तकरीबन बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि यार बस ठंड है तो मैं जरा जल्दी से बस खाऊं और अपने बिस्तर में पहुंचूं। ये चीज नुकसानदेह है, उसको टाइम दें। फिर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चाय का, कॉफी का इनका इस्तेमाल ना हो, एक महदूद मुनासिब मिकदार में हो जाए तो वो
1: ऐसी बात है,
0: फिर भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल चाय पे हैं कि जरा सा थकावट हुई, चाय ले ली, गोली खा ली, चाय ले ली, या सुबह दोपहर शाम वो एक चाय तसलसल से चल रही है, तो वो चीज फिर नुकसान दे सकती है और उसकी सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और उस वजह से फिर आप, हालांकि चाय सर के दर्द को दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: वक्ती तौर पर वो सुकून देती है, लेकिन वो एक जब मुसलसल आदत बनेगी तो फिर आपका सर दर्द जो है वो चाय से भी नहीं जाएगा,
1: जाहिर सी बात है। ये तो
0: फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ेगी,
1: ऐसी बात है,
0: और तब जाके वो आप उससे छुटकारा पाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: फिर नींद जो है वो तो लाजमी है, नींद के बगैर अगर आप कहें, वैसे है कि 7-8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें,
1: ठीक है,
0: लेकिन कुछ काम की नोयत ऐसी होती है कि लोग कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कोई 1 घंटा, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो, नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठाऊं जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है। हाँ।
0: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं,
1: बिल्कुल,
0: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है, इनको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें,
1: ऐसी बात है,
0: अपने दिमाग को सुकून दें, अपनी निगाहों को सुकून दें, आराम दें, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है कि सब वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें, आजकल तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते,
0: ऐसा ही है।
1: अब आजकल देखें आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हों, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके हैं, यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे।
2: हेलो
1: जी, जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं आप?
2: बात कर रहे हैं हमारे घर वाले का, सिर दर्द है पट्टों में।
1: अच्छा, पट्टों में दर्द होता है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: रेडियो सुन रहे हैं।
1: आप ठीक है, आप रेडियो सुनते रहे जी। हकीम साहब उनकी घर वाली है और कमर में पट्टों में दर्द होता है, तो क्या मशवरा देंगे आप इन्हें?
0: मशवरा तो उन्हें यही है कि आप अगर आप असाबी कमजोरी के मरीज हैं तो फिर इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं,
1: ठीक है,
0: और अगर आपको वैसे जिस्म में दर्दे हैं तब भी उसके लिए जरूरी है कि एक मरतबा दवाखाने पे आना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से मर्ज का पता चल सके,
1: ऐसी बात है,
0: और फिर उसके लिए इलाज तजवीज कर सके, लेकिन इतना इंशाल्लाह जरूर है कि उन्हें अफाका जरूर महसूस होगा और वो मुस्तकिल तौर पे भी होगा।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से मेरे भाई? शाहआलम से बात कर रहे हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप? हेलो जी, तो प्यारे भाई आपने मेरे ख्याल में जो है ना आवाज आपकी कट गई है। एक मैसेज है हकीम साहब के, अनस भाई के, आपका शो लाइव है। बिल्कुल, हमारा शो लाइव है और रोजाना ही लाइव और बराह रास्त होता है। हकीम साहब, प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनट हैं
0: जी,
1: सो एक आखिरी कलर है, इनकी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन है तू गाल करें दे पैवे? अच्छा, पश्तो ची खबर एक उरु रसो को लकम जिन रसरे
3: यजुन
1: खबर एक हो जी, चीर सेहत हवाले सर मसवर शता
3: अगर को जी का को वालो के दफ्तर मला कबीर किताब का सर मसला दा
1: मतलब सही, मतलब
3: चिसर खुश कोई
1: मतलब चिसर डीर ज्यादा दर्द कवी
3: سر نکلا
1: خبر ہے رجی نن مو پورا پروگرام پدی بندے وکڑل سر درد من

500 क्रीम लिए हैं हमने, 1600 के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लिए हैं, चरंगा चरंगा सी फूड क्रीम लिए हैं हमने 1600 के, वाजी वाह ढेर खा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लिए हैं मुझको न्यूट्रिशन से रा मीना दा जकापा न्यूट्रिशन के इनामात इनामात दी न्यूट्रिशन वाडू खाली डेबो मने डेरा मने ने थी इंशाल्लाह हाँ मिला अभी के बजना आप इसी लग शादो शादो शिक्के देखा ना सी शादो सी डेरा मने ने सी रिजवान को सलाम दे नोटिस प्रोडक्ट्स का माल दे गर शिबाज न खले क लोनी के लिए तो जी ना अलग गर शिबाज वाला गर कुरुखान वाला बड़ा बायदार है शेषा बायदार है शेष اسے من کا وخاسی تاسو سغلی غلی کیشه گنه نو غلی غلی ما کیشه

खींचना। फेसबुक के ऊपर मेरा इंतजार करने वाले लोग, वैसे तो इस वक्त 91 के ऊपर भी लोग इंतजार कर रहे थे, पहाड़पुर एफएम के ऊपर भी इंतजार कर रहे थे और टांग एफएम के ऊपर भी कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आजकल हमने आप लोगों के लिए एक चौथा मीडियम भी ऑन किया हुआ है और वो है फेसबुक का, जहां पर खलील ताबे शवान की आईडी के ऊपर आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं। तो वहां पर चूंकि 10 मिनट पहले प्रोग्राम शुरू हो जाए, जाता है, हमने सेटिंग करनी होती है और तमाम चैनल्स को जो है हमने लिंक्स भेजने होते हैं, तो 10 मिनट पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो लोग जनाब कह रहे हैं कि भाई कब आएंगे खलील भाई, हम तो आपका वेट कर रहे हैं। तो भाई फेसबुक वालों का जो इंतजार है उसको भी हम खत्म कर दिया है, बहुत सारा आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन अब आपके साथ मेरी आवाज बिल्कुल शेयर हो रही होगी। हसनैन टाइगर जो है, हसनैन अली जो है हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं, लड़ाकू बंदे हैं, लड़ाकू जनाब हसनैन को पहले तो सिर्फ डेरा वाले जानते थे, अभी तो ये प्रोग्राम सिर्फ डेरा में नहीं चल रहा बल्कि टांग और पहाड़पुर में भी चल रहा है, बल्कि पहाड़पुर वाले भी हसनैन को जानते हैं लेकिन हसनैन को टांग वाले नहीं जानते। तो हसनैन भी फेसबुक लाइव के ऊपर हमारे साथ मौजूद है। जनाब अली मुआविया जो है वो भी फेसबुक के ऊपर मौजूद है और कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपकी हुस्ने समात है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैं कुछ लोगों को ढेर सारा बोर कर देता हूँ। जनाब किधर है मास्टर फतेहुल्ला साहब, किधर हैं? जब मास्टर फतेहुल्ला साहब जब भी मुझे कॉल करते हैं ना तो कहते हैं एक तो आप ना बड़ा प्यारा लग, नहीं लग सकती कि आप आधा घंटा ना अपने प्रोडक्ट की तरगीब देते रहते हैं, फिर आधा घंटा हमारे पास होता है और उसमें 120 की रफ्तार से मुकाबला होता है डेरा टांग और पहाड़पुर वालों का कि कौन काल मिलाता है, तो किस्मत वालों की काल मिल जाती है। तो भाई ये प्रोग्राम का मकसद आप लोगों तक आगाही पहुंचाना है केसन के प्रोडक्ट्स के।

जनाब, कैसे नजर आएगी शान आपको हर फॉर्मुलेशन में आगे आगे नजर आएगी। जिस तरीके से जाफरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साबन और क्रीम के साथ हम मौजूद हैं, उसी तरीके से ग्लूटाथियोन फार्मूले के अंदर इसके काम बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन के अंदर ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करना होता है। और जैसे आपकी ग्लूटाथियोन की कमी पूरी होती है तो आपकी रंगत जो है वो गोरी गोरी सी होने लगती है, आप गोरे गोरे से होने लगते हैं। तो जनाब ये बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको ना ही क्रीम मिल रही होगी, ना ही सोप और ना ही फेस वॉश। तो जनाब इसका एक आपको पता होना चाहिए कि केसन कंपनी जो है, हम हर फॉर्मुलेशन क्रीम जो होती है ना, क्रीम कभी भी एक किस्म का बैच पूरा साल नहीं चलता होता, ठीक है जनाब। यानी कि सर्दियों के लिए क्रीम अलग से बनानी पड़ती है, गर्मियों के लिए क्रीम अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है जनाब। क्योंकि सर्दी के अंदर आपको पता है कि स्किन बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अभी जो बैच हमारा जो क्रीमें हैं वो इस वक्त जो हमारी शार्ट है, उसका वजह यही होता है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो उस हवाले से हमारी एज पर जो है सीजन जो है क्रीम आती है, यानी कि उसकी फार्मूला वही होता है लेकिन इसका जो टेक्स्चर होता है उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को ज्यादा करना पड़ता है। गर्मी वाली क्रीम सर्दियों में नहीं चल सकती, तो इस वजह से ये क्रीम शॉर्ट है। लेकिन अभी इंशाल्लाह आपको सोमवार मंगल से इसका बैच कंप्लीट हो चुका है, बल्कि सोमवार मंगल से आपको हमारी जो और क्रीमें हैं, जैसे कि भाई एक धमाका करने जा रही है केसर नेचुरल पाकिस्तान क्रीमों की मार्केट में, कि जब हम आपको दो तरह की क्रीमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं जनाब, एक डे टाइम क्रीम, नई क्रीम है हमारी जिसका नाम है लवली फेस, और दूसरी नाइट टाइम क्रीम जिसको हम कहते हैं केसन का स्किन क्लियर फार्मूला।

जनाब जाफरानी फार्मूला केसन ग्लूटावाइट फार्मूला के बाद इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं केसन का स्किन क्लियर सीरम फार्मूला। ठीक है जनाब, चार किस्म के डिफरेंट सीरम से बनी हुई क्रीम आपको मिलने जा रही है, जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड, जिसके अंदर ट्रांजेमिक एसिड, जिसके अंदर एजलिक एसिड और जिसके अंदर रेटिनॉल शामिल है। चार किस्म के सीरम्स को हमने इन्फ्यूज किया है इस कमर्शियल फार्मूले में, इस स्किन क्लियर फार्मूले के अंदर, और नाम हमने इसका नाम रखा है स्किन क्लियर फार्मूला। क्लियर कहते हैं साफ करने को, स्किन क्लियर फार्मूला यानी ऐसा फार्मूला जो आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगा इन पावरफुल सीरम्स के जरिए। ये जो इसके अंदर पावरफुल सीरम्स हैं, आपने अभी तक नाम नहीं सुने होंगे, अभी तक आपने नाम सुना है विटामिन सी सीरम का। ठीक है जनाब, आपने विटामिन ई सीरम का नाम सुना होगा, आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा एजलिक एसिड सीरम, आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा ट्रांजेमिक एसिड सीरम, आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा रेटिनॉल सीरम, आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा हेलरोनिक एसिड। ये इस दौर के सबसे ताकतवर और रिजल्टफुल सीरम है जो हम आपको क्रीम की सूरत में इन्फ्यूज करके केसन के स्किन क्लियर फार्मूले की सूरत में प्रोवाइड करने वाले हैं। जनाब चेहरा हो हसी, पूरा चेहरा ही जनाब हसीन चेहरा होता है। स्किन क्लैरिटी के साथ आपकी स्किन को गोरा बनाने वाली ये क्रीम केसन स्किन क्लियर फार्मूला।

0: पहचान।
1: 14 अगस्त नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो अपनी जान है जनाब, जरूरी तो नहीं होता 14 अगस्त को ही मिली नगमे चले। जी जनाब, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर 0344-9-36-33-66। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक हो?
1: मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? मोहतरम
2: अहमद नान टांग से बात कर रहा हूँ।
1: मोहम्मद अदनान टांग से बात कर रहे हैं। कल भी अदनान भाई ने हमें कॉल की थी। अदनान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं? ठीक है।
1: मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई गलती निकाली है पिछले 25 मिनट में हमारी?
2: नहीं, गलती नहीं निकाली, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे।
1: अच्छा जी, कौन सी रिक्वेस्ट?
2: जी वो ये है कि यहाँ के कुछ दोस्त कह रहे थे आज सुबह मिले तो आपका प्रोग्राम सुनते हैं, तो वो कह रहे थे कि पश्तो में होना चाहिए, तो अच्छी बात है।
1: अच्छा, पश्तो में होना चाहिए?
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: क्यों उर्दू में समझ नहीं आती? उर्दू आजकल तो हर बंदे को उर्दू आती है यार, स्कूल पढ़ते हैं ना, चाहे पठान का बच्चा भी है तो उसने भी स्कूल पढ़ना है, तो उर्दू तो हर किसी को आती है
2: सर। बस उनको पश्तो अच्छी लगती है ना, जैसे उर्दू तो कोई ये नहीं है सराय की, उर्दू सराय की तो अपना ही है हमारा, लेकिन उर्दू देखो, उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है, वो नहीं है मसला, लेकिन पश्तो में।
1: अच्छा, तो फिर मैं पश्तो सीख लूँ आपके लिए फिर?
2: जी सर, सीखना चाहिए ना आपको।
1: अच्छा चलो ठीक है। पश्तो वैसे कोई भी काम इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है, लेकिन आपकी तरजीह होती है ना कि आप उस चीज को तरजीह देते हैं या नहीं देते। तो बीच में हमने ना पश्तो का एक आरजे हायर किया था आप लोगों के लिए ना, 4-3 दिन उनका प्रोग्राम होता था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई टांक में तो इतने ज्यादा सराकी लोग बोलने वाले हैं, आपको किसने कहा कि पश्तो जरूरी है टांक में? ठीक है, तो टांग में मेजोरिटी मेरे ख्याल में के अगर आप हिसाब करें तो 70% जो है सराकी बोलने वाले हैं, पता है आपको?
2: सर सुबह वो तो है, मैं खुद सराकी बोलता हूँ सर, ये नहीं है कि मेरा पश्तो स्पीकिंग है, लेकिन मैं सराकी खुद सराकी बोलता हूँ, लेकिन वो वजह नहीं है सर।
1: लेकिन मैं देखिए ना, मैं प्रोग्राम सराकी का नहीं करता, मैं तो उर्दू को करता हूँ ताकि हर किसी को समझ आए। है जी, ये तो सिर्फ कॉलर के साथ उर्दू सराकी में बात करता हूँ मैं, अदरवाइज तो उर्दू में प्रोग्राम करता हूँ, और मेरी जुबान उर्दू इस तरह है कि मैं सराकी बहुत कम बोलता हूँ।
2: सर मैं भी आया सराकी में, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, मैं भी उर्दू में बात कर रहा हूँ।
1: चलो आपकी जो सजेशन है उसको हम भी वो समझते हैं और पश्तो सीखेंगे आपके लिए जरूर। स्टडी माशे वैती पश्तो तो हमें भी आती है यार, बखैर रखले भी मैं कह सकता हूँ, अगर
2: बखैर रखले अच्छा
1: तो बाद शुदा भी कह सकता हूँ, मनाना डेरा मनाना ये भी कह सकता हूँ, और कितने पश्तो चाहिए
2: सर? बस ये कुछ अल्फाज है, और भी थोड़ा सा ज्यादा चले जाए तो फिर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे।
1: चलो थोड़े बहुत आप भी सिखा दिया करें ना, 1-2 लाज तो यार आप भी सिखा दो तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी।
2: इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको, क्यों सिखाएंगे?
1: अच्छा, ताकत प्लस आपने शुरू कर ली है, करवानी थी किसी को?
2: इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और काफी रिजल्ट मिल रहा है इंशाल्लाह।
1: रिजल्ट मिल रहा है, चीज अच्छी है
2: जी, चीज अच्छी है माशाल्लाह। मैं कोई कंपनी का ये नहीं कहता सर, लेकिन आपकी चीज जो है ना, जैसे आपने कहा वैसी ही है इंशाल्लाह।
1: असल चीज होती है, हम ये कहते हैं कि हम जो क्लेम करते हैं ना, क्लेम भी हम आधा बता रहे होते हैं, आप यकीन कीजिएगा, पूरा क्लेम भी हम नहीं बता रहे होते। आप जैसे ताकत प्लस है ना, आपके इसके इतने फायदे हैं कि मैं यहाँ पर ऑन एयर नहीं बता सकता हूँ, जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे ना उनको समझ आ रही होगी कि भाई ये ताकत प्लस तो बहुत पाए की चीज है। ठीक है जी,
2: नहीं इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह इसका रिजल्ट मिलता रहे
1: इंशाल्लाह। आप देखिए, आपके टांक में हम अभी आए हैं, ठीक है ना, लेकिन हम 2021 से हैं और हम एफएम की जान नहीं छोड़ रहे, 5 सालों से लगे हुए हैं, तो उन्हीं लोगों को बार बार चीजें दे रहे हैं, अगर 2 नंबर चीजें दे रहे हो तो कब से भाग ना गए होते हम यहाँ से।
2: आप भी देख रहे हैं कि टांग वाले इंशाल्लाह आपसे भी उतनी मोहब्बत कर रही है,
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत
2: ज्यादा प्रोग्राम के साथ आपकी चीजों के साथ
1: ऐसा ही,
2: ठीक है,
1: बिल्कुल अदनान भाई ऐसा ही है, बहुत ज्यादा मोहब्बत टांग वालों की हमें मिल रही है, सेल की सूरत में प्रोग्राम की
2: मिलती रहेगी।
1: हाँ बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम भी आपको, हम आपको अदनान भाई इंशाल्लाह म्यारी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, हम भी रिजल्ट की कमी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और आपके पैसे कभी भी जाया नहीं होंगे इंशाल्लाह, कभी भी जाया नहीं होंगे किसान के ऊपर आपके पैसे।
2: सर मैं आपका टाइम जाया नहीं करता,
1: बहुत शुक्रिया,
2: जो भी मेरी आवाज सुन रहा है सबको मेरी तरफ से सलाम।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया अदनान हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल भाई ऐसा ही है कि कैसे नेचुरल पाकिस्तान पर जो भी आंख खोलता जाएगा वो केसन का होता जाएगा, क्योंकि केसन की हर एक प्रोडक्ट आपको दावत देती है अगली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके घर में हर तरफ आपको केसन केसन और केसन नजर आती है, क्योंकि केसन रब दिया था है। जनाब शिराज शहानी हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई।
2: वालेकुम सलाम लाला खलील, खरियत है लाला?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तुसा सुने सो ठीक ठाक वे देवे प्रोग्राम सुन दे बैठे प्रोग्राम सुन दे बैठे वे मैं कि चाह पी के
2: बस पहले पांच को पहले एहतशाम भाई का प्रोग्राम सुना से।
1: अच्छा जी एहतशाम भाई का प्रोग्राम कितना सुन दे बैठे हुए। अच्छा आज हफ्ता है, एहतशाम बारक जाई, एहतशाम बारक जाई के रे एहतशाम दा
2: एहतशाम आज गई दा
1: बारक जाई
2: बारकजई
1: मेरा जिगरी यार है, पता है तो कौन
2: जी अजिया बिल्कुल सलाम सारे आके से मैं आके बादशाह के मंजर सलाम करे लाले तू।
1: अच्छा ओ हर इतवार ते सारे कोल पाए वैन दिन केसन शाप दे होते केसन दी हुन लॉन्चिंग थी वाला लिए नवी प्रोडक्ट दी, तो मैं को कल कल होके मैं को घंटियां दी शुरू हुई खलील भाई इतवार ते लॉन्चिंग रखा है, इतवार ते गुब्बारे फुड़े सू, इतवार ते केक कपे सू, उनको इतनी खुशी आंदी है जिवें मैं को खुशी आंदी अपने प्रोडक्ट दी। तो माशाल्लाह मेरा बचपन दा दोस्त है ते एक अच्छा दोस्त जरा होंदा है उंदी देखो यारी दोस्ती यानी इतने दादा पंद्रह पंद्रह साल चल वजने इंदा मतलब है कि एक बहन दो बड़े मुखलिस हैं हर खुशी को सेलिब्रेट कर दिल को खुश थी ऐसे लोग मुंह घट मिलते हैं जो कामयाबिया खुश थी
2: पैगाम दे
1: जी बिल्कुल गलूटा हाँ बिल्कुल तजर्बा कोई भी प्रोडक्ट सारी जरे तुसा इस्तेमाल करे सो तो इंशाल्लाह कदा भी इवें नो असी कि तुसा पशमान थियो या तुहाकू लगे कि भाई तुहाडे पैसे जाया थी गए तुसा इदे सारे पैसे लावे तुहाकू महसूस थी सी कि तुहाडे पैसे सजाए थे इनके संदो ते
2: इवें गल से
1: बिलकुल जी इंशाल्लाह हर आवन आले वक्त कंपनी जितना टाइम गुजरता वेंदा होंदा है कंपनी दा हाथ मजीद स्ट्रांग थींदा वेंदा है उंदे तजुर्बा मजीद अगू ते वधदा पिया होंदा ते तुहाडे तक जिहड़े नवे प्रोडक्ट आंदे पिया होंदे ओ पहले कोले ज्यादा अच्छे आंदे पिया होंदे क्योंकि कंपनी दा तजुर्बा वधदा पिया होंदा
2: मुकम्मल जितने भी प्रोडक्ट सारे को इस्तेमाल की जैसा था जब ये आले थे बता दिया भाई ये आले माशाल्लाह सारे सुने
1: जी जी मैं कि एक क्रीम बहुत ज्यादा फेयर एंड लवली इस्तेमाल थी घर के बीच हूँ बहुत महंगी थी चुकी है या अगर मिलती भी है तो 200 की छोटी जी ट्यूब होती है असा जी तो फेयर एंड लवली फार्मूला देने पे तुसा इंशाल्लाह हैरान थी वैसे होते इतनी कम कीमत कोई भी घर इवें नरा सी जेरे सारे लवली क्रीम इस्तेमाल न करेंदा पे क्योंकि लवली क्रीम ऐसी शह है जेरी कि हर रोज खवातीन इस्तेमाल करें करनी भी चाहिए क्योंकि डी टाइम जल्द इस्तेमाल करें दे तो उन्हें स्किन को बड़े फायदे मिलते पे होंगे इंशाल्लाह। बस आई सर बस एक दूर इंतजार
2: पूरे पाकिस्तान दे हर कोने दे विच केसन ही केसन होए
1: इंशाल्लाह जी तुम्हारे दुआएं सारे ना सारी मेहनत अल्लाह दी मेहरबानी ते एक दर जरूर
2: अल्लाह ताला तो कामयाब करे अल्लाह ताला तो खुशियां देवे
1: ला ओके जी बहुत मेहरबानी जनाब शिराज शहानी भाई जी। जनाब आज हम पहाड़पुर में एमबी साहब के घर में मौजूद थे, माशाल्लाह उम्रे से वो तशरीफ लाए हैं और उन्होंने बड़ा तकल्लुफ के साथ जो है मुजाहरा किया और हमारे लिए जनाब इतनी मुश्किल से जो है क्या कहते हैं इकराम जिसे हम कहते हैं दावत कहते हैं बंदोबस्त किया हुआ था। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं और हम तो गए थे आपसे मिलने के लिए कि आप उम्रा से आए हैं लेकिन आपने तो भाई खिदमत की इंतहा कर दी और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको तकलीफ दी जारी बात है लेकिन मेहमान रहमत भी होता है। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कैसे भाई?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी बहन कैसी हैं? आप भी हमारी सोनिया भी ठीक हैं? आप खैरियत से हैं?
0: ठीक है। और को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, मैसेज का इंतजार है
1: अच्छा उसने बहुत सारे मैसेज ना फेसबुक के ऊपर किए हुए हैं, ना पूछो हाल बस तुसांदे तुसांदे है इंतजार खा गया ऐसा को स्नैन भाई लड़ाकू भाई
0: जी जी बिल्कुल वो हमारी मेरे ख्याल में अनार ग्रुप के थे ना।
1: हाँ वो
0: सारे अच्छी खासी नोक झोंक हो जाती थी,
1: सारे फसादी बंदे कान में सुनना कोई सुन ना ले, सारे फसादी बंदे अनारी ग्रुप में थे। यकीन करें ये जो ग्रुप था ना अनारी ग्रुप, ये तो कुदरती तौर पर इसका नाम लेते थे तो मुझे उलझन होती थी कि यार ये क्या हो रहा है।
0: फिर मैं उनकी फूफी तो नहीं थी, वो जो फूफी घर में आती है लाग लग जाती
1: है। हज नहीं, असल में सारा ग्रुप तो खराब नहीं था, खराब का मतलब ये है कि बहुत जज्बाती लोग थे अनारी ग्रुप
0: के। जज्बाती थे बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज शहजादी शहजादी आज शहजादी फेसबुक के ऊपर आए हुए, शहजादी
0: उससे ज्यादा वेलकम कहते हैं,
1: वो उससे दो कदम आगे थे, हसनैन से दो कदम आगे शहजाद बोलो
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छे बात आज फेसबुक के ऊपर वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे और आप सुनाए प्रोग्राम सुन रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है? सही है,
0: बहुत अच्छा
1: गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। टांक वालों को मोहब्बतें कैसी लग रही हैं आपको? लग रहा है कि टांक वालों को हमारी कंपनी पसंद आ गई है?
0: बिल्कुल पसंद आनी भी चाहिए, कोई नेचुरल चीजें होती है ना।
1: हाँ नेचुरल चीजें होती हैं और ऐसी चीजें जो फायदा पहुंचाती हैं और फौरन पता चलता है कि भाई ये चीज अब हमने इस्तेमाल शुरू की है तो इसके नतीजे भी आना शुरू हो गए।
0: मुझे भी स्किन केयर फॉर्मूला जो है उसकी आने की इंतजार है, जैसे पहुंचेगा तो फिर हम भी पहुंचेंगे।
1: ये झुर्रियों को खत्म करने के लिए इतना प्यारा फार्मूला होगा झुर्रियों को, क्योंकि इसके अंदर रेटिनॉल जो है ना, रेटिनॉल विटामिन ए होता है, ये इसके अंदर सीरम शामिल है और रेटिनॉल जो होता है ना सबसे ज्यादा आपके स्किन के सेल टर्नओवर के ऊपर काम करता है और आपकी झुर्रियों को खत्म करेगा, बिल्कुल जवान करेगा। वो कहते ना जवान और गोरा, ये स्किन क्लियर क्रीम जो है ना ये दो
0: काम है, वो
1: चाहिए
0: मतलब खत्म हो जाती है तो फिर शुरू आ जाती है ना, जैसे
1: फिर ऐसा है
0: में काम करते हैं ना,
1: बस दिन के वक्त लगाएंगी आप डे टाइम क्रीम केसन की, ठीक है जी, और साथ में जैसे आपकी छाइयां खत्म हो जाएं तो उसके बाद आपने स्किन क्लियर को छोड़ देना है और आपने सिर्फ डे टाइम क्रीम लगानी है। भाई गारंटी देता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दूंगा कि जब तक डे टाइम क्रीम लगाते रहोगे जिंदगी भर छाइयां वापस नहीं आएंगी, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूंगा आपको,
0: ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह,
1: ठीक हो गया, बस आने वाला है फॉर्मूला, तशरीफ लाइएगा
0: इंशाल्लाह। सुनने वालों को शाम और दूरी अदर और वो पता नहीं हैप्पी वाली इस तरह की लग रही है,
1: हैप्पी वाली इब्राहिम खुद उसको ढूंढ रहे हैं दूरबीन उठा कर, लेकिन
0: सुहाना आप भी काफी अच्छे से गायब है।
1: सुहाना आप भी बीमार रहती हैं आजकल, उसके लिए दुआ कीजिएगा और कोशिश इस दफा आएंगे तो फिर उनको बोल दूंगा भाई शो में भी आया करें, ठीक हो गया?
0: बिल्कुल
1: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सब सुनने वालों का, आपकी तरफ से सलाम हो गया।

जी जनाब, कैसे नजर पाकिस्तान का प्रोग्राम इस वक्त भैया के वक्त आप तीन बड़े शहरों में सुन रहे हैं। पहाड़पुर में हमारे ट्रांसमिशन बढ़ा दी गई है और पहाड़पुर एफएम रेडियो पैगाम के ऊपर अब केसन की ट्रांसमिशन 2 घंटे होगी। ठीक है जनाब, 1 घंटा सुबह 9:30 से 10 केसन का मॉर्निंग शो पैगाम है सुबह के नाम से आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं सुबह 9:30 से 10:30 के दरमियान। और दूसरा हमारा टांग के अंदर पहाड़पुर के अंदर जो प्रोग्राम है वो सुपहर 4 से 5 बजे के दरमियान, और यही प्रोग्राम अब लिंक के जरिए टांग में रेडियो अमन के जरिए और ग्लोबल एफएम 91 पर डेरे इस्माइल खान में भी एक साथ सुन रहे होते हैं। और इन शहरों के अंदर अब हमें दुकानदारों के नाम लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर दुकानदार की जरूरत है, हर दुकानदार की मजबूरी है केसन को रखना, क्योंकि जनाब इसके यूजर अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हर दुकानदार अपने पैसे ही 4 पैसे बचाने के लिए वो ढूंढ ढूंढ के केसन को लेके आता है। और आप यकीन करें जब हम मार्केट में जाते हैं तो अक्सर जो है हम ऐसे दुकानदारों के पास जाते हैं कि उनसे हम केसन का तारुफ करवाएं तो ऑलरेडी देखते हैं तो ऑयल, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश पड़े होते हैं, तो कहते हैं भाई आप तो अब आ रहे हैं, हम तो काफी अरसे से ये उठा के बेच रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं होता। और ये क्यों होता है? तब होता है जब आप लोगों की डिमांड होती है, केसन को पसंद करने वाले आप लोग इस तरीके से पसंद कर रहे हैं कि हर दुकानदार की जरूरत है, हर होलसेलर के पास आपको केसन मिलेगी, चाहे वो डेरा है, चाहे पहाड़पुर है, चाहे टांग के एरियाज हैं, माना तक आपको इंशाल्लाह केसन के प्रोडक्ट हर दुकान के ऊपर मिलते हैं। फिर भी नाम ले लेते हैं तो आपको आसानी रहती है, जैसे टांग के अंदर मंसूर जर्नल स्टोर हाजी जरबत खान का दुकान नंबर 3-4 सदाम प्लाजा के अंदर आप जाएंगे, उसी के साथ सदाम प्लाजा के अंदर के साथ 3 दुकानें हैं, एक तो ये मेन शॉप है, उसके साथ अरबाब जनरल स्टोर है, अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर एंड फिर इमरान कॉस्मेटिक स्टोर। ये मेन जो टांग है, टांग जहां पर ट्रैफिक चौकी होती है, जहां पर ट्रैफिक चौकी है उसी के साथ सदाम प्लाजा है और उसी के अंदर ये 3-4 सेल पॉइंट है हमारे। उसी के सामने आप देखेंगे किबले की तरफ तो वहां पर जो है सदर प्लाजा है और उसके ऊपर भी दुकानें हैं, नीचे भी दुकानें हैं। बेसमेंट में मदीना मार्केट, मदीना कॉस्मेटिक स्टोर है, मदीना जनरल स्टोर है, आपको वहां पर भी केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा टांग में अलबदर मार्केट के अंदर फहीम जनरल स्टोर है और ट्रैफिक चौक के साथ गुलाम जान जनरल स्टोर है, यहां पर आप जा सकते हैं। वही जनरल स्टोर अलबदर मार्केट के बिल्कुल सामने है, अब्दुल्ला जनरल स्टोर, सिटी जनरल स्टोर, फैसल, इन तमाम दुकानों के ऊपर आपको केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे जहां तक हम टांग की बात करते हैं। ठीक है जनाब, इसके अलावा डेरा में हर दुकान पर भाई कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जहां पर केसन के प्रोडक्ट ना हो। वजह क्या है? केसन डेरा की कंपनी और डेरा के लोग केसन से इतने ही मोहब्बत करते हैं कि हर दुकानदार रखने पर मजबूर है।

0: लेकिन अब आप लोगों के मैसेजेस को एक नजर देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की कॉल्स लेंगे। फेसबुक लाइव के ऊपर तलहा किंग जो है आ चुके हैं, एंड तलहा की जिंदगी के कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जनाब। और तलहा जो हमारे शॉप पर असिस्टेंट है मेरे, और हर वक्त आपको नजर आते हैं, मैं होता हूँ या नहीं होता, कल एंगेजमेंट है तलहा की भाई। तलहा के लिए कल का बहुत बड़ा दिन है, और एक लाइफ पार्टनर का मिलना, और वो लाइफ पार्टनर जो आपकी पसंद हो, जो आपको जिसकी नेचर आपको पसंद हो, जो सर से पांव तक आपको पसंद हो, और वो अगर आपका लाइफ पार्टनर बनने जा रहा हो, तो भाई इससे और बड़ी खुशी की क्या बात होती है। तो एडवांस में भाई तलहा को ढेर सारे कंग्रेचुलेशन, ढेर सारी दुआएं जो है तलहा के लिए। तलहा के कल का दिन बहुत ही खास है, और अल्लाह ताला तलहा की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, और यूं ही अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब रहे, इसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों को समेटते रहें। तो कल तलहा का दिन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, और जब इनकी इंगेजमेंट का एक जो है प्रोग्राम है वो अटेंड भी करेंगे, और इनकी खुशियों के अंदर जरूर शामिल भी होंगे। आपने भी तलहा को खुशी के मौके के ऊपर जरूर याद रखना है, क्योंकि तलहा जो है, तलहा किंग को सारे वो लोग जो जानते हैं, जो खलील ताबी जवान को जानते हैं, जो केसन को जानते हैं, वो तलहा किंग को भी जानते हैं। तो तलहा किंग क्या चीज है।
1: हाँ जी, यार बनाया जांदा नहीं मेरा दिल मेरी जान।
0: जी जनाब, तमाम सामीन को सलाम। आई एम मुहर्रम अली एक सॉन्ग सुनाएं अहमद नवाज सीना की आवाज में। यार गलत जगह तुमने मैसेज कर दी, शरीफों वाला प्रोग्राम है। शाहजहान पंजाब उम्र वाली कलूर कोट से सलाम पेश कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर, शो इज वेरी नाइस। अननोन अननोन लड़की हमारे साथ है जनाब, डांक से
1: इश्क दा संगल पाया।
0: अच्छा, आज मुझे एक कॉल आई पंजाब से ना, एक भाई थे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की है, वो आपको सुनाऊंगा, और कितनी प्यारी बातें कर रहे थे वो, और कह रहे थे यार मैं ना एक दफा सीलिंग का काम कर रहा था यहाँ पर डेरा में, तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, तो जैसे आपने बात की ना जोड़ों के दर्द की, कमर के दर्द की, मोहरों के दर्द की, तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। मैंने कहा ये मेरे काम का शो है। तो मैं सुनता गया, तो मेरे घर में 2-3 मरीज हैं ऐसे, तो मैंने ये आयल आपका 2 बोतल मंगवा ली। एक मुझे खुद डॉक्टर ने कहा था आपके मोहरों का मसला है और ऑपरेशन होगा, ये उस बंदे की मैं बात बता रहा हूँ आपको, और एक और बंदा था जिसकी कमर में हमेशा दर्द रहता था, कहते मैंने वो 2 आयल मंगाए, मैंने लगाया, ठीक हो गया। मैंने कहा अल्लाह इतने बड़े खर्चे से बचा लिया, पता नहीं वो मोहरों का ऑपरेशन वैसे 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, मोरों का ऑपरेशन अगर करना पड़ जाए। और फिर एक और बंदे को सेट हो गया, तो अभी ना मुझे मैंने जिसको बताया भी, लोगों ने बुकिंग करवा ली है, तो कहते हैं कि 6 बोतलें मुझे शिफाए दर्द की आप भिजवा दें। 6 बोतलें कह रहा था कि 6 बोतलें जो है मुझे आप शिफाए दर्द की भिजवा दें। तो मैंने कहा इतना मुतमिन है, कहते यार कितना मुतमिन हूँ सोच नहीं सकता, और मैं उस बंदे से जरूर मिलना चाहता हूँ जो इस शिफाय दर्द का प्रोग्राम करता है ना। अब देखिए मैं खुद बात कर रहा था उससे, लेकिन उसे समझ नहीं आई। असल में आप जो फोन पर बात करते हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है एज कम्पेयर जो आप लाइव आपकी जा रही होती है। तो मैंने कहा क्यों, कहते यार उसने जो बातें की थी ना वो 100% ठीक थी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो आप जब डेरे आएंगे तो आपसे उस एंकर से हम आपकी मुलाकात करवा लेंगे। तो बात करने का बात क्यों मैं आपसे कह रहा था, आप लोगों के सामने हम लोगों की बातें क्यों रखते हैं, इसलिए कि ये लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है, और ये शिफाए दर्द हमारा आयल, आप यकीन कीजिए कि हमारी हर एक प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 बन चुकी है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ताकत प्लस की बात करें, हेयर ऑयल की बात करें, शैम्पू की बात करें, या फिर ग्लूटावाइट रेंज की बात करें, जाफरानी साबुन की बात करें, मिल्की साबुन की बात करें, ये हर एक प्रोडक्ट ब्रांड है, हर एक प्रोडक्ट, कोई एक नहीं, बाज़ुकात किसी कंपनी की कोई एक एक चीज मशहूर होती है। हमारी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे वो अपनी जगह पर एक ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। और शिफाए दर्द के अभी हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्डर हैं, उसकी भी शॉर्टेज का इश्यू है, वो भी इंशाल्लाह मंडे तक होगी। जितनी भी प्रोडक्ट हमारे शॉर्ट चल रही है, जैसे शिफाए दर्द है, जैसे ग्लूटावाइट रेंज है, इंशाल्लाह मंगल तक ये सारी की सारी शॉर्टेजेस जो है हम इनके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, और इंशाल्लाह आपको सोमवार से ये सारी की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अनोन लड़की टांग से जनाब हमारे साथ हैं और बहुत शुक्रिया, नाम अपना नहीं बता रही। इसके साथ साथ और कौन है, मोहतरम खलील साहब सलाम, शेख होता टांग से फतेहुल्ला मास्टर, मोहतरम फतेहुल्ला साहब को मैंने आज स्टार्ट में ही लॉन्च उनका नाम लिया था और आज आप ही गए तो वेलकम करते हैं उनको प्रोग्राम में। अच्छा जी ताकत, अच्छा जी जमीला बाजी वजरिस्तान वान से, अच्छा जी तीन बोतल ताकतवर ताकतवर अच्छा जी ताकत प्लस नाम है यार, ताकतवर नहीं है। कोई बंदा कह रहा था वो आपको जो पावर प्लस है ना, पावर प्लस, मैंने कहा वो बैटरी होती है यार, पावर प्लस नहीं है, ताकत प्लस है। पावर प्लस वाले तो सेल होते हैं वो जो सवाल करते हो यार तुसी लोग। जी जनाब तो ये पावर प्लस नहीं ये ताकत प्लस है। और कहते हैं कि तीन बोतल ताकतवर फार्मूला यूज कर ली है, जारी रखूं या बंद कर दूं? जमीला बाजी, जमीला बाजी, चलो जी जमीला बाजी, ये तो आप आपको पता होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत आई है। ताकत प्लस तो ऐसी चीज है कि इसको पूरी जिंदगी खाते रहें फायदा ही होगा। ठीक है जनाब, इसको हफ्ते में दो दफा खाएं फायदा है, इसको हर रोज खाएं फायदा है, फायदा ही फायदा है। इसको जितना खाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है जनाब, इसको जितना लंबे अरसे तक खाएंगे उतना ज्यादा फायदा है क्योंकि ये ताकत से भरपूर है। कल मैं आपको एक बात बता रहा था, दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है लेकिन केसन ताकत प्लस के अंदर जो कैल्शियम है ना वो दूध से कई गुना ज्यादा है। ठीक है जनाब, लो कर लो गल। इसके अंदर सी सेम जो ऑयल है, व्हाइट जो सफेद तिल होते हैं जनाब, उसके अंदर दूध से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है ताकत प्लस के अंदर। तो हड्डियों की कमजोरियां जिसको है, हड्डियों का दर्द जिसको भी है, जिस्म का दर्द जिसको भी है, जिसका भी वजन नहीं बढ़ रहा, और वो लोग भाई जो चारपाई पर सोते हैं और लगता है कि उनके हड्डियां उनको चुभ रही हैं, तो भाई वो सबसे पहले ताकत प्लस लें और गोश्त को आता हुआ देखें अपनी हड्डियों के ऊपर। जो भी बंदा मेल फीमेल जो भी सुन रहा है और वो अपने जिस्म के ऊपर हाथ लगाता है और उसको लगता है कि हड्डी हाथ में आ गई है, तो भाई आपको ताकत प्लस की जरूरत है। ये फार्मूला आपके जिस्म के ऊपर गोश्त चढ़ाने वाला है, मसल मास जो होता है, मसल मास जो होता है उसके ऊपर ये काम करता है और आपके जिस्म के ऊपर गोश्त को लेके आता है। तो अगर इतनी कमजोरी है आपको कि आप अपने बाजू को हाथ में लेते हैं तो गोश्त से होती हुई हड्डियां दोनों आपके हाथ में आ जाती हैं, तो भाई ये टाइम है कि आप ताकत प्लस शुरू कर लें और फिर देखें अपने जिस्म के ऊपर उन हड्डियों के ऊपर गोश्त को आता हुआ देखें। तो जमीला बाजी मर्जी है आपकी, बंद करना चाहें तो कर सकती है, नहीं तो कंटिन्यू रखें। कैसे हो भाई हमजा बलोच, हूँ खुराई से, शो नाइस है हमेशा की तरह, सबको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, स्वीट वाली दुर्रे आदन।

0: जी जनाब, देखते स्वीट वाली दुर्योधन क्या कह रही है। द यूजर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोड्स, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वाले उत्साह जी, कैसे हैं आप और आपके लिसनर्स? मेरे लिसनर्स में तो आप भी शामिल हैं। हम कहते हैं बहुत उदास हूँ, बहुत उदास हूँ, अटेंडेंस लगा दी मैं, मैंने इतने मजे के साथ ये लफ्ज पढ़ा, मुझे लगा ये कुछ शेर है।
1: मेरी जान के, मेरा दीन के, ईमान के, जद रब रसूल
0: के। शेर नहीं थे जनाब, वो कह रही मैं बहुत उदास हूँ, अटेंडेंस लगा दी, एंड सबसे इल्तिजा है मेरी अम्मी जी के लिए दुआ करें जी। आपके अम्मी को क्या हुआ जी? अगर उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, तो हम भी उनके लिए ढेर सारी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और वो फिर से सेहत याब हो जाए। सलाम खलील चाचू, कलंदर अली शहानी, नियाज हुसैन शहानी, सदा खुश रहो, सदा खिलते रहो। नदीम अब्बास उतरा फेसबुक लाइव के ऊपर हमें सुन रहे हो, तला किंग कहते हैं बहुत शुक्रिया बॉस, जजाकल्ला, आमीन एन सुमा आमीन जी, हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हां खलील भाई,
0: अब इस

0: बिल्कुल ग्रामीण वाल तास्ता दोबारा प्रोग्राम चे खुश आमदेद वाय बिल्कुल तासो दे वक्त गाना वरदा दे गुजर आलम पवाज बांधे और बिल्कुल चा वोस रेडियो अनकड़ी चाता पता नवी छे दे वक्त पर रेडियो अमन 88.4 टांक पर स्टूडियो बंदे कम प्रोग्राम रवान बिल्कुल दे वक्त तासो प्रोग्राम दे अमन माजिगार लखपल रोर उमर दाऊद सरावरो टोल और दुन की चा वोस रेडियो अनकड़ी ना गोतम जब प्रोग्राम छे वेलकम खुश आमदीद वाय और बिल्कुल नन चिकम मा प्रोग्राम दा पदे प्रोग्राम चिकम मा दे प्रोग्राम टॉपिक ता दे वक्त कदर पबारे छिन बिल्कुल ओस पाति चिकम तासु कल नई तासु कम माता काल कहो नो बिल्कुल चितासु हूं कल हूं काल प राजो काल कहो माता नो बिल्कुल तासु प माता दे वक्त कदर पबारे छि यो चो खबर खाम खा कहो नो बिल्कुल नोर टाइम बन जाए कहो और बिल्कुल दे तासो कालो पर तरफ जो गोरु छि मुस्तर दे काल पली के अवला नया कालर चौक ती और दकम जी नदा जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम उमर दाऊद रोड चला चला से जोड़े
0: खैर दजी तासो खैर ता बंदीवान से खैरियत ता
1: उमर दाऊद भाई जो कस मंदा रे लावर के सड़ा पुष्टने में तो कहो ले सड़ा मैं तो चुके पता न लगी
0: ना बस मुश खो राजू प्रोग्रामो ता राजू खो के देसी तासो नहीं और दिली चरंग वक्त सा जिंदगी दे शाद आवाज दे कटकी जी बंदीवान से हेलो हेलो आवाज दिकट की जी बंदीवान से ब्लश का सिग्नल होता से नो बिल्कुल ता आवाज तबादला मुश्तरा सही न की जी बिल्कुल ढेर माजरत सरा बंदीवान सेब काल मुश्तकड़ है खुचुन के दे बंदीवान सेब आवाज से दा बिल्कुल तबादला मुश्तरा सही न के दा तासो माजरत सरा दोबारा कालो को पजीरो 9963511488 बांधे गुरु बिल्कुल छे मुसर दे प्रोग्राम पली के बल कलर चौक तजी और दकम जी असलाम वालेकुम
1: वालेकुम

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

मैं हूँ असमनूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप

अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और